0: ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ସହକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରୂପକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई

0: नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे टी20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक आरंभ करुछु भक्ति गीतर विशेष कार्यक्रम वंदना। भावभोला ठाकुर से टिके भाव विभूति पाइले रत्न सिंहासन छाड़ी छुटी जाती भावर केन्द्रस्थल को कणिकाए भाव विभव पर गीता पंडार भार बहन करती बुढ़ी पछरे बैगण क्यारी बुली बुली क्षीरोद्रीपाट चिरंती आ जयदेवं गीत गोविंद देही पदपल्लव मुदारम पर पद लिखि दिंती से भावर बणिक श्रीजगन्नाथ स्वामी अनंतकोटि प्रणाम।

0: अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं चतुर्दश जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक शुणु आज कार्यक्रम सूचना सकाल 7:10 आम स्वास्थ्य शुणे आलोचना अनियमित ऋतुस्राव आलोचक डाक्तर हेमलता स्वई प्रभात परिक्रमा सकाल 7:25 कथिका सकाल 7:35 परंपरा सुरक्षा गणमाध्यम भूमिका आलोचक नंदकिशोर सिंह अंजलि सकाल 7:40 कंठशिल्पी प्रतिभा प्रधान संगीत प्रसेनजित सिंह श्रीक्षेत्र माधुरी सकाल 8:30 विषय रही पति महापात्र सेवा आलोचक सुखदेव महांती वैदेश विलासर अशीतम भाग सकाल 8:45 गीत गीतिका सकाल 9 नाटक मांसर विलाप दिन 10 रचना कालिंदी चरण पाणिग्राही प्रयोजना मनोरंजन दास अभिलाखित दिन 11:10 कंठशिल्पी विश्वनाथ राव एवं प्रसन्न कुमार मिश्र पाला दिन 11:30 परिवेषण करिसेंती कपिल खंडाई एवं साथे श्रोतांक एसएमएस माध्यम ओडिया एवं हिंदी कथाचित्र कार्यक्रम मंचूल मध्याह दिन 12 डाक्तर को पचारि बुझा दिन 12:30 केन्द्रा गीत दिन 1:10 परिवेषण करिसेंती थुलीनाथ एवं साथे नारीमल दिन 1:20 एथिरे आलापरे दीप्तिमय विश्वाळंक सह साक्षात्कार गांधी चर्चा दिन 2:45 विषय रही मातृभाषा और गांधीजी आलोचक प्रशांत कुमार महांती ओडिया कथाचित्र गीत अपराह 5 राति 7:02 युववाणी फोन इन मल्हार अपराह 5:30 गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 74वां भाग संध्या 6:10 ओडिया आलबम गीत संध्या 6:30 जिला हालचाल शुणे मयूरभंज जिला संपर्क राति 7:25 पलिमंच राति 7:30 विषय रही मुख्यमंत्री कामधेनु योजनार विभिन्न दिग आलोचिका डॉ शुभश्री नायक हिंदी कथाचित्र गीत राति 8:02 इंग्रजी आलोचना राति 8:30 विषय रही फल अफ अन् द थन्स अफ लाइफ आलोचक डॉ हिमांशु शेखर महापात्र सांप्रतिक घटनावली उपरे कार्यक्रम रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी दिल्लीरु राति 9:30 नाटक अरजा राति 10:02 मूल हिंदी लक्ष्मेन्द्र चोप्रा ओडिया अनुवाद आर्य कुमार हर्षवर्धन प्रयोजना अनंत चरण जेना आरके सूर्यनारायण गायत्री वीणा वादन शुणिपारे राति 10:30 शुणिले आज कार्यक्रम सूचना आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे टिके परे।

0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम
0: एही संगीत सबु भारतीयों पाई केवल एक संगीत नुहे, ए हेउछि देशवासींकर स्पंदन, एक पवित्र मंत्र। स्वाधीनता आंदोलन बेले सबु संग्रामी मानंक पाई वंदे मातरम थिला एक जागरण, एक देशात्मबोध प्रेरणार ध्वनि। आबाल वृद्ध वनिता सबु देशवासींक पाई ए संगीत हेउछि राष्ट्रीय एकता, शक्ति ओ देश प्रेमर पवित्र आवेग। एही संगीत को आम देशर महान कवि ओ उपन्यासिक बंकिम चंद्र चटर्जी रचना करिथिले 1875 मसीहा नवेम्बर मास 7 तारीख रे। एबे देश पालन करुछि वंदे मातरम संगीत रचनार 150 वर्ष पूर्ति। वंदे मातरम रो अर्थ मा मु तुमको प्रणाम करुछि। एही संगीत 1882 मसीहा रे आनंद मठ उपन्यास रे स्थान पाइथिला। 1896 मसीहा रे विश्वकवि रवींद्रनाथ टागोर एही संगीत को प्रथम थर पाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रा अधिवेशन रे गान करिथिले। 1905 मसीहा बंगभंग आंदोलन बेले एही संगीत देशभक्तिर एक स्वर पलटिगला। स्वाधीनता आंदोलन रे एहा लोकमानक मध्यरे देशभक्ति ओ एकतार जागरण सृष्टि कला। 1950 मसीहा जानुआरी 24 तारीख रे एहार प्रथम दुई पद राष्ट्रीय गीतर स्वीकृति लाभ कला। गीतरे थिबा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम आम देशर प्राकृतिक वैभव को वर्णना करे। एही संगीत देशर सांस्कृतिक ओ राष्ट्रीय जागरण रे गभीर प्रभाव पकाए। आज मध्य एही गीत देशर एकता, निष्ठापरता ओ मातृभूमि प्रति श्रद्धार अमर प्रतीक हे रहिछि। श्रोता बंधु, आपण अंचल अनुष्ठित होउथिबा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं साहित्य अनुष्ठान संपर्क में सूचना आपण माने देई परिबे एही कार्यक्रम प्रभात परिक्रमा रे। एथि सहित आपण मानक गांर कथा, जेमिति कि गांर अवस्थिति, गांरे थिबा धर्मानुष्ठान, गांरे पालित होउथिबा पर्व पर्वाणी, गां आखपाखर दर्शनीय स्थान मानक संपर्क में सविशेष बिवरणी लेखि आम पाखकु पठान्तु। सेसबु मध्य स्थान पाइबो एही कार्यक्रम रे। आमर ठिकणा हेउछि प्रभात परिक्रमा कार्यक्रम मार्फत केन्द्र निर्देशक आकाशवाणी कटक, पिन 7530001।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केन्द्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: श्री मोदी तीन देशों

0: की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की

0: न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डिम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4th अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: प्रपोजल करिपारे कि मिस्टर देव?
1: हाँ हाँ काहेकि नुहे निश्चय करिपारती आपण जे मोर सम्मानित अतिथि कहतु ना आपण प्रस्तावटा कर्नेल मोर सम्मानित अतिथि खुशि पई जहाँ किछि करबाक प्रस्तुत हाँ जहाँ किछि कहतु ना
0: बहुत धन्यवाद मिस्टर देव थैंक यू वेरी मच गोटे कथा वेल नो मु कौन कहूँ मिस्टर देव आम को आज रातिर शेष विदा डिनर भोजी दबा को मिस्टर देव से जले को जब फेयर कर पारती गिव अस ए पार्टिंग केक मिस्टर देव
1: कौन कहले ना ना कर्नल
0: आई एम श्योर मोर प्रपोजल आपन बुझी पारिला ना
1: ना से किछ नै मुझे किछ बुझी पारु नै
0: आ दैट्स दैट
2: अच्छा आपन अरे कोन बुझी पारिला नै कोन तू आपन कुछ कहबा कुचबे
0: कोन तू मिस्टर देव
2: साहेब आपन कर भारी दुष्ट नु कि आपन को जली ऊपर तंकर लोभ
1: जली जली को आपन चाहते किंतु जली जली कोन चाहे के जानी से जे मुख निर्बोध निपट पशु मात्र
0: मुछाए मिस्टर देव मुछाए आपन को से जले को आपन को जले लुक आज राती रो डिनर पाई आपन को जले को
1: संभव
0: लाइक करू
1: ता किमिति संभव से जे निपट पशु आ आमे आमे जे मणीष अति बुद्धिमान मणीष
2: बोध भी कथा टा को ए पर्यंत बुझी पारला नी मिस्टर देव निश्चय बुझी पारला नै
0: यस जली रो मांस रे मिस्टर देव वंडरफुल डिनर खूब नरम आउ स्वीट मीठा मांस हब जले आई कैन बेक फॉर दैट आ बाजी मु रखी पारे जंगल रे तो आपन कर अनेक अछि बहुत जली पाई पारिबे ए जंगल रे डोंट यू एग्री मिस्टर देव
1: निश्चय निश्चय निश्चय कर्नल अनेक जली मो जंगल रे भर्ती ना मोर कौन सी आपत्ति नहीं मोर कौन सी आपत्ति नहीं कर्नल हैमिल्टन मोर किसी आपत्ति नहीं जली रो माँ मो मार्फत पिला तर छाड़ी दी थला मो आज ताको ही आपन को मार्फत छाड़ी दिली आपन को मार्फत
0: Good. Thank you very much, Dev Sahib. Thank you very much. Both, both, dhanyabad. Jalir ma jemti thaku nijo peto bhitare rakhithila. I mean, mu bi aji in the same way, same niti thaku mo peto bhitare rakhibo. Mu tahale jalir ma, you know, agreed? Aji tharu mu jalir ma heu chanti.
1: अरे ये कौन माधिया माधिया दोरा कोनी ओ के कला तते एटी कोन सर्कस देखिबो कसि पाजी शैतान गद्ध कुटका
2: ओ गद्ध में एन एस इज पोस्ट टू हॉर्स घोड़ा शब्द रो विपरीत गद्ध नुए के मिस्टर देओ
3: हजुर हजुर मां बाप वासुर आस्ते को डोरा जिमती जबरदस्त कला जली पाई एठार भी सेम ताको संभाल हेलानी हजुर
1: चुप मजबूत करी बांध ताको से साळ गसटा रे आ जली कोनी ए ए खून तरे बा
0: देखंतु लुखिया देव साहेब ए छुरी को देखंतु केमती चिक चिक करूची ए छुरी रे मु बहुत एनिमल काटी छंती देव साहेब आज खूब मजा नो
1: खुब
2: व्यस्त हो पड़ुछे
0: मोटे नुहे मिस्टर देव ए तो आपन को लोक माने डोरा को बिल्कुल जबत करी छंते ए कुकुरटा यू आर डोरा खूब फ्रेंड्स वेल माय फ्रेंड डोरा मोर बंधु तुमे कौन मते आक्रमण करबा को चाहौ छी
4: ऑलराइट
0: ऑलराइट तू तो

तो जॉली को सेव करीब तब देख दोरा लुक यार ए छुरे की खूब चिक चिक करू थी है ना केमन थी तोर जॉली गोड़ा को की परिहा काटी पारू चंती देख लुक यार।

0: बापी बापी
1: कौन की माँ कहीं के डाकू छो
0: सेमन कोट गले बापी सेसु साहेब में
1: सेमन फरा कोटक ले उठ गले माँ तंगु तो मु विदाई दी आसली
0: आउ ताले
1: कौन ताले माँ
0: ताले मु जॉली कहीं बापी
1: कौन कहलू
0: अरे सुनी पार न बापी मु जॉली गला गड़े
1: हाँ सुनी पारु छ सुनी पारु छी माँ
0: तेबे तमे किछि कहू न कहीं की बापी अरे एमती चाहू जो कहीं की जॉली गला गड़े
1: हाँ जॉली जॉली तमर अछि माँ जॉली तमर अछि
0: कोटी अछि कोटी जॉली कोटी अछि से तमे मते मिच्छ कहू छ बापी तमे तो केबे मिच्छ कहू ना
1: मु मिच्छ कहू छ माँ मु अपनी मिच्छ कहू छ माँ तम आगे
0: हाँ बापी माध्या कहला ते साहेब मो जाली की मार की मुझे साहेब को मारबे हां हां मारबे तको
1: हां हां हो मां तमे तको मारिबो जाली तमरो अछि मां निश्चय अछि एई जे सुनी परनो ता कंठस्वर आ देखि परनो तार से ढळ ढळ आखी जोड़ी को
0: कोठी काहे बापी मु तो देखि परनी किछि
1: तमे देखि परनो एई जे एई जाली जो अबिकल से मते चाहिछि सेमिते मूर्खंग भली जळ जळ डोळा जोड़ी करे
0: तमे एमती कोन कहुचे बापी पागलंग परी कोन गपुच
1: मु काहे कि पागल होई मा तमे मते पागल बोली कहिलो ताहले तमे किछि देखि पर्न मा एई जे एई माटा त टळी पड़ला मोर गोटे मात्र गुली रे चलीटा जलीटा से माँ ठार दूध पीऊला इतने छोट पा जलीटा
0: हाँ ताकू तुम तो घे आसल माँ को तेरा मारदे शिकार पोरा
1: मु कम शिकारी माँ जलीर माँ टा कि बड़ बड़ दंता हाथी महाबल मनीषिया भाग देखी चु तुम्हें केमी शिकार कर सब आनी
0: कौन है बापी एम कहीं कह
1: कौन है जानू माँ शेष शेषे मते मेंचड़ हरिण छुआ जलीटा यार जलीटा मते उल्टी शिकार करदेला माँ मते उल्टी शिकार करदेला काली राति रे इत्ते बड़ शिकारी हेले भी ए जलीटा मते एका बेले के मो कलिजा को लक्ष्य करी
0: तमे सब कौन कहछे बापी मते माध्या कहला जल किसी साहेब मारी देछि माध्या कहते
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जली मते मारी देछि मा मो कलिजा को से खाई जाइछि मा मो कलिजा को से खाई जाइछि
2: हजूर हजूर डोरा को हमें अटकाई रखि पारिलुनि हजूर से पूर्णी से तंटी कटा जंगल भितर को पळैछि सिकुली छिंडाई हरथर जोठि आंबो तंबू पड़ीतला सेठ ताकु धरि आनिथिलु आमे सेठी से जली जोठि कटा हैथला सुंकी सुंकी बुलुथिला एथेर तो किछि खोज खबर नाही तार हजूर चारिआड़े खोज

0: सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूलदुआ चेटिनर सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: शेषरे शिवव्रत दासंक रचनारु शिल्पी प्रसन्न कुमार मिश्रा।

0: श्रीमन श्री सत्यनारायण कपति अच्छी आनंद के बार
1: हरिवाल
0: मानुआ बाल वृद्ध वनिता समस्त नारायण मन विष्ट पुण्य करंतु सर्वे आनंद के बार
1: हरिवाल
0: काल दूर हुई शांति प्रतिष्ठित हेऊ आनंद के बार
1: हरिवाल।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
2: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉ जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार

आराम से दे दियंती। से कपड़ा को आणी की मो केक रा बेस रे ताको काटी भी सर्कल वाइज हो कि स्क्वायर वाइज हो कि ट्रायंगल हिस्से

0: related sexual violence at UNSC describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास

0: राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा सीआरएसवी की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह की हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमरीका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneaar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: टुडे भारत इज मार्चिंग कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स द विजन सेट बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ए विकसित भारत बाय 2047। National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश सोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत

जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में

0: कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम की गई है, पर आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मुजफ्फरपुर, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में

0: मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र कार्यक्रम आम केन्द्र प्रचारित होनीश आठ दशमिक छ मीटर तथा नौश बास्तरी किलोहर जोगे आम परवर्त कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे विज्ञापन पर
2: गांरु सहर जाए सबु स्थान रे
3: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
3: केवल आकाशवाणी।

0: गान्धी चिन्तन व दर्शन र कार्यक्रम गान्धी चर्चा को स्वागत। हाउ श्रोता बंधु, माँ और मातृभाषा यह दुईटी प्रतिटी मनुष्य पाई गुरुत्वपूर्ण। आमे यह धरा पृष्ठ को आसीबा बेल ठारु मार ममत्व बोध को अनुभव करू। ठीक सेमिति जीवन शेष पर्यंत आमर मातृभाषा रही थाए आम सह। माँ हेउछन्ति मनुष्यर प्रथम शिक्षक, आउ प्रथम शिक्षार माध्यम हेउछि मातृभाषा। मातृभाषा केवल एक भाषा नुहे, एहा आमर संस्कृति परंपरा चिंताधारा आउ आत्मपरिचयर आधार। मातृभाषा को जातिर आत्मा बोली मने करुथिले गांधीजी। से कहुथिले जेउ शिक्षा मातृभाषा रे मिले सही शिक्षा मन को गभीर भाव स्पर्श करे आउ ज्ञान को स्थायी करे। विदेशी भाषार गुरुत्व को से केबे अस्वीकार करिनथिले, किंतु मातृभाषा को अवहेला करबा को से जातीय दुर्बलता बोली विवेचना करुथिले। गांधीजी को मतरे शिशुर समस्त प्राथमिक शिक्षा तार मातृभाषा रे हेबा उचित। एहाद्वारा शिशुर सृजनशीलता आत्मविश्वास आउ चिंतन शक्ति विकसित होइथाय। सही चिंताधारा आजर जातीय शिक्षा नीति रे मध्य प्रतिफलित होइछि। हाँ, आजर गांधी चर्चा रे सही मातृभाषार कथा, मातृभाषा ओ गांधीजी ए संपर्क रे आलोचना करुछन्ति प्रशांत कुमार महांति।
1: सारा विश्व थिला तांकर कर्मभूमि, अथच भारत थिला तांकर वाणीर प्रयोगशाला। तांकर समुदाय आयुषर मोट 2329 दिन से देश ओ जाति पई कारागार रे बिताइथिले, एवं सेथिरु 182 दिन से उपवास रे कटाइथिले। गांधीजी केवल अहिंसार कथा कहू नथिले, बरं न्याय ओ स्वाधीनता पई अहिंसा किपरि कार्य करिथाय ता से देखाइथिले। मनीषर केउ गुण रहिबार आवश्यक बोली प्रश्न रे गांधीजी कहिथिले अहिंसा ओ साहस। जने पाश्चात्य गांधी चिंतक तथा पंडित कहिथिले विश्वर आदर्श गांधी थिले नम्रतारे संत फ्रांसिस्को सदृश ओ विज्ञतारे सक्रेटिस्क परी। गांधीक आह्वानर विशेषत्व हेउछि प्रतिपक्षर भूल दर्शाई ताको अपदस्थ ओ अपमानित करिबा जागारे प्रतिपक्ष सह मिसि समाधानर अन्वेषण तथा सत्यर प्रतिष्ठा। 1915 जानुआरी 9 तारिखरे गांधी स्वदेश प्रत्यावर्तन करथिले। आज सुधा यही दिन को प्रवासी भारतीय दिवस भाव में सारा विश्व में पालन करा जाउछि। गांधी राजनैतिक परामर्शदाता तथा मार्गदर्शक गोपालकृष्ण गोखेल तांग दुईटी विशेष परामर्श देथिले। प्रथमटी हेउछि वर्षक पर्यंत सर्वसाधारण रे कोनसी मतव्यक्त न करबा। द्वितीयटी हेउछि तत्कालीन भारतवर्ष को परिभ्रमण करि जनमानस को अनुध्यान करबा। गांधीजी से विषय रे अनुभव कले मौलिक चिंतन ओ ज्ञान पई मातृभाषा ही शिक्षादान प्रकृत माध्यम। 1920 मसीहा रे यंग इंडिया रे गांधी लिखिथिले एक कथा स्पष्ट जे भारतीय भाषा गुड़ी करे आमे जदि उन्नति न करंती तेबे आमे बौद्धिक ओ सांस्कृतिक दृष्टिरु पुरुष ओ नारी मानक मध्यरे अबा उन्नत वर्ग ओ साधारण लोक मानक मध्यरे बढ़ुथवा दूरत्व को अटकाई पारिबा नाही। एक कथा ध्रुव सत्य जे केवल मातृभाषा रे शिक्षादान जनगण मध्यरे मौलिक चिंता उद्रेक करिबाकु सक्षम हेबो। गोटिए भाषा भाव रे इंग्रेजी पढ़िबारे असुविधा नाही, मात्र एहा शिक्षादान रे एक माध्यम न हेउ। मातृभाषा एथिपई उद्दिष्ट कारण इंग्रेजी भाषा रे शिक्षादान आम भितरे भय ओ आनुगत्य उद्रेक करे। यंग इंडिया रे से लेखिथिले आमे इंग्रेजी माध्यम रे अन्यमानक संस्कृति जानिबा उचित, मात्र ता पूर्वरु आमे निज संस्कृति को जानिबा ओ ग्रहण करिबा उचित। से आहुरी मध्य कहिथिले मु चाहे ना मो घर चारिपटे कांथ उठू झरका बंद रहू, मु चाहे

0: हाँ देव, व्हाट इज दैट तुलसी पत्र?
1: माने आमर विश्वास तुलसी पत्र पढ़ले सब जिनस पवित्र हो जाए।
0: बीफ
2: ना माने आमी जानिछु एक्जेक्टली तुलसी पत्र रो
1: बेटर। वी वांट टू नो योर फिलोसफी।
0: मुई टिके तले कहितली समय कथा कहितली गोटे छोट हाथ बंधा गोटी रे समय को बांधि रखिबार अपचेष्टा रो आपण माने आनी क्षांत रहंतु। समयटा पृथ्वी रे तयारी हुए नी, समय तयारी हुए 2 billion light years आवे।
1: व्हाट 2 billion years?
0: 2 billion light years ना तो ब्रह्म, ना तो ब्रह्म कौन जानी छो?
2: सुनी छी
0: सेठ जात हला निनाद ब्रह्म माने बिग बैंग। से बिग बैंग रु जात हुए कोटी कोटी विश्व ब्रह्मांड। ये विश्व पुणि परिप्राप्त हला आहुरी 1 lakh crore विश्व ब्रह्मांड रे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब शीतल हला आमर ये पृथ्वी जन्म नेला। तेणु मु पचारुछी हाथ रे खंचा बांधि समय रो असीम परिप्राप्ति को आमे कोन गोटे मकरी करूनी?

0: 보스, 빅벤 봐주지. 그린위치 기사 앞으로지. 넥라인 버리 걸피다. 이소 꼬불도 그러지. 아무것도 디리디리. 아마 이 라이트. 뭐고 아메리카에게 소멸과 아토 거리 바리바니. It will act at our command. 아메리 조지파이 조작하고 싶어. 세이다이 뻑크루더 소멸.
1: Boy, get a glass of water from freeze.
2: Where
1: are you? Where are you? I mean,
0: oh! Even I'm drunk? Oh, well, see, how I walk to my car?
1: No, I mean, I don't
0: know what I'm saying. What's up? I'm going to get unconscious. I'm going to get unconscious. सुपर कॉन्शियसनेस को चले जाए सीक्रेट टा कौन हो लिसन जेंटलमैन समुद्र मंथन रु जो विष बाहर थिला ताकु तो महादेव खाई निरकंठ हो गले बाकी जो टिके खाई पर लेनी ताकु आमे मने खाई भाव चल जु वी आर सुपर जीनियस वी आर सुपर बीइंग्स अपन मन की इच्छा पद मर्यादा बस पावर डिग्निटी এসব গোটা গোটা সোশ্যাল প্রডাক্ট এই সাময়িক চেতনাকে নিয়ে গোটে ভগবান পরিকল্পনা কিন্তু এইটি গোটে কথা আমি ভুলে যাচ্ছি ভগবান হচ্ছেন গোটে শক্তি 10^-35 to 10^-33 তার নির্দেশে তুমি পরিচালিত ইউ আর ডুইং নথিং বাট ইউ আর ডাইরেক্টেড টু ডু দ্যাট এনিথিং ইউ আর নট বিং You are non-being.
2: ता मने आमर सोसाइटी रो विकास हो
0: सोसाइटी माने कौन जान जो सेटा गोटा क्षणिक चेतना प्रति सेकेंड रे तार रूप बदलुची तेणु समस्त मानसिक स्तर रु आहुरी ऊर्ध्व जीवा को चेष्टा करो जानिबो शक्ति टा कौन डोंट फॉरगेट यू आर डायरेक्टेड टू डू एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग यू आर ओनली गिनी पिग्स एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द सुप्रीम

0: much. Please.
1: See you, Akuramosa.
0: Tome khaicho.
1: Mo patibrata ramani nuh.
0: Oh, damn your patibrata. Hai mold, sansara, dali, chaula, duiti santana jathesto. E sobu bad patibrata ra avashyakata nahi.
1: Avashyakata ta tamo swami ji bujhebi. But I have house to run. Jeunthi situ au mitu achanti, mousa achanti.
0: Ghar achi, car achi, balance
1: achi. Of course. E sobu rahiba avashyam bhavi.
0: Karan. आमे तांकरी पे बंची चे
1: बंची वाले न्यूना तमो कोसड़ा चाहती जाना था ना ताहले तमो स्वामी जी को मुगटे सिख्या दी था थी
0: सिख्या
1: Who is a woman and what is a woman?
0: Oh, chicken का चमत्कार
1: तमे सैलेड खाओ चो
0: तमने chicken plate टमर दिखवार भूली गया
1: ना ना ना ट्रांस रे भूल ठीक रे प्रश्न न था
0: मुसबु ठीक करु ची I am directed to
1: take your dinner
0: मिनु I love you so much.
1: Trance. Pila mane se ghare soi chanti.
0: No.
1: Chicken plate ta tole padi gala. Acha. Jemiti adi manab talu muhare uthai tara khadya sangrah karuthila. Semiti gota abhinay kara jau. Mane you are directed to do.
0: Who are you to direct me? I am a non being.
1: And I am a being.
0: You know.
1: My foot.
2: मूसा पापा कहीं की रागी गले
3: चुप बैठ कर चुप कर बैठ बिठा रा
2: मो भी सुननी मूसा
3: अरे मु थीला जाए तोर किछ डर नहीं सोई जा सोई पर
2: मते नींद तो होनी
3: ओ तू भाई खटू गम जा
2: मूसा हमें कौन जानो जियो पिलानो कुओ पिलानो खटर सुनते नहीं पापा और मामी के अंतिम एकाती सोच चुनती।
4: सिमान्ने पूरा बॉर्डर ही गलनी।
2: बॉर्डर है ना कॉली कोजी लगाऊंगी।
3: अरे पार्टी करो ना। पापा राखी ले घरों चली पड़ी भी।
4: मोसा, हमें ठीना और रोई बनी।
3: आप कुआड़ हो चुका?
4: कली पापा मते कोती ला। से मते कुआड़ डून स्कूल ला रखी
2: है। अब
4: वो कुआड़ ची भी?
2: तू
4: वो पिला माने कौन जियो पिला अंगु मागों देगी
2: खाली पैसे चेंज करेंगे
3: ओहो अरे चुप हुई सुई पड़ा मुखौटी कॉली सुनिया दरकर नहीं
4: मुंह कौन कॉली करो जी अब मुंह करो जी
3: हेला हेला बाबा मुंह करो जी कॉली मुंह करो जी तब सुई रहा गया तो सुई पड़
1: इट्स एनफ ऑफ योर ट्रांसेंडेंस मिस्टर महापात्रा I am no longer Minati Mahapatra. I am Minati Mahanti.
0: Oh, my sweet Minati Mahanti. I repeat. I love you so much, Minu. I love you. Ame Kashmir Puri Jaitele. Sikara Ratri Japan Kartele. Gulmarg Re Shopping Kartele. Aao.
5: Attention please. Attention please. Flight number 247 is going to take off in a minute. Your captain is Mr. Soni, co-captain Mrs. Malhotra, navigator Mr. Jay Prashad. Please fasten your seat belts. Please fasten your seat belts.
1: Bossi chu kon ma? पिला मानो कर बेल्ट बांधी दियो
6: बेल्ट हाँ हाँ अच्छा तमें मोर पुलो भर टाइम चो
1: सॉरी सॉरी तो एकदम भूली जाए ची
6: ओ अमर स्किंग करी बार थी ना
1: एक्सक्यूज मी ये थारो को अब केबे भूला बनी आई आप बोलो जाइस
6: मिट्टू सोई जाए ची
1: मुझे वो गोलर का खेक नहीं ची भी अच्छा बहुत तमान पे मो शाल टा तमा बेकर बांधी दो ची
6: कौन गोटे शोकेस बने हो मत है
1: तमें बड़ा निर्दय कहिले भूले जी श्रीनगर तो पुल ओवर रो अभाव नथिबो तमे रेस्ट नेला बेले मु बाजार कैमल स्पन पुल ओवर आ गोटे ओवरकट किनि आनिबी ओके
6: ओके अच्छा तमे एका जीवो
1: मु तो सब ठीक एका जाय अच्छा आमे को होटल रहिबा
6: शिकारा बुक हिजे
1: शिकारा डैडी तो कहू नथिले
6: तमे काहे कि भाबुचो तमे डैडी मो संसार सर्वमय करता
1: ओ सॉरी देव सॉरी एक्सक्यूज मी

0: Mittu, be careful. Don't go to slope.
1: Yes, Papa.
0: Sittu, follow your brother.
2: अरे प्रोग्रेस की स्टिक टेप चेक करी नहीं
1: हो? ओह कितने थर कोई भी मिटू स्टार्ट
2: मिटू आस्ते
0: ओहो आस्ते मैंने कौन चल चली जीबे मिनिमम स्पीड 20 किलोमीटर
2: ओ बाबा चाहो चाहो तो से मैंने देखा जाऊँ ना दी
0: मो ठीक देख पाऊँ ची ए देखो मिटू टर्न नला हाँ सिटू टर्न ना वो चेस्टा कर ची ओ माय लॉर्ड अरे देयर ऑन द स्लोप
1: मिटू
0: मतलब किसी देखा जाऊँ नहीं
1: मिटू
0: से मैंने कौन कोले सब निरर्थक
3: आसंतु
0: मिटू कौन है ला मिटू
3: मिटू अनकंसेस
1: कौन है ला तारो कौन है ला
3: तार गोड़ा भांगी जाई ची स्लोप रे ता स्की स्टिक टा हटात भांगी वाला बैलेंस रखी पल्ला नी पड़ी वाला टीपीआर कंपाउंड फ्रैक्चर है
1: ची सिस्टर को ये कौन ला
3: कौन चोने का ही मो संगे रासन
0: अपन बहुत उपकार कर चंदी अमित अगु संगे संगे हॉस्पिटल नहीं जीव
3: सही हॉस्पिटल को मुंह तो नहीं उची ताछड़ा आपन तो 6 किलोमीटर पिलाट को बोई नहीं परबे नी
1: हां
0: आपन को परिचय तो मु पाई परली नी
3: परिचय मुनिजे
0: माने आपन को ना
3: गोटे ना भीतर मनुष्यटा अति संकुचित होई जाए मु छले मनुष्य सेति कोन परिचय
0: हो आई एम सॉरी आपन को धरे खंडे मात्र जामा नै अथच सितरे
3: बॉडी आकस्टन सुच नेचर शीघ्र आसंतु पिलाटा खूब जंत्रणा भोगुची
0: हाँ
1: से जदि गोटे ठक कही थाए
3: मु सबु किछि सुनि परछि मा आपण जा कहिले सेटा निराट सत्य प्रत्येक मनुष्य निजको ठगि चलिछि
0: ओ आई एम सॉरी प्लीज चलंद सिटु ओपन अप योर स्कीज
3: ए
0: गिव मी दिस स्टिक्स
3: ए तो मु घर देखा गलानी
0: आपण कोन डॉक्टर
3: जहाँ आप मन कर पारती राम सिंह कवाड़ खोल दुईटा चेयर और गोटे बेंच बाहर को नहीं आस नहीं नहीं बेंच टा को उत्तर दक्षिण कर पका आकाश का आसी तो मुखुआ
0: आप इतने आकाश को चाहते कहीं
3: सूर्य सन्धान नवा को
1: मिट्टी रे गोड़ ऊपर सेटा कौन रखिले
3: गोटे बार मैग्नेट
0: अच्छा मैग्नेट कौन हबो तार तो प्लास्टर हबा कथा
3: काहे के तो जंत्रणा दबो पिलाटा को से पर आपन कर भविष्य तो 21st सेंचुरी आ बेसी देरी नहीं
0: आपन कौन चिकित्सा करचंती
3: ताले उ जंत्रणा नहीं किंतु हे मा सूर्य तुम कोठी लुचि गलो
1: हे हे सूर्य किरण पड़िला
3: हे हे समस्त चुप करन तो चुप करन तो चुप करन तो प्लीज प्लीज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0: ए जंतुड़ा मु आउ सही पारुनी मते विदाई दियो मते विदाई दियो मनोज मते विदाई दियो
1: ना ना तमे कोन कलर उंदती लिपू को तम मानस को का बगरे जाड़ी दे गलो अरे मो आसीबा पर्यंत टिके अपेक्षा करि परलोनी बाबा बहु आपण माने किछि भी भलो कलेनी कुठे दियो मनुष्य को जंत्रणार जौ घरे जाळी पड़ी पाउच करि देले ना ठीक अछि बस मु जाउछि मलिपु के भी सांगरे नै जाउछि आपण माने मते जळीबे सारा जीवन जळीबे खसी स्वप्न सुधा भाभी नी ब
0: जो संस्कृत मनीष कर अनुरोध मोर अनुरोध मानस
2: अरुंधति विदाई मनीष के कथा कहे सब मरीचिका सब प्रहेलिका सब मरीचिका हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत
3: अंशुमान संभवत आम द्वीपराज्य तुम्हें अवस्थान कर एक मास हवाक जाठार किसी स्वतंत्रता लक्ष्य करुच
4: अनेक स्वतंत्रता तो भरी रही मात्र सबुर सत्य उपलब्धि समय तो निहती दरकार आशा शील सिद्ध तुम्हें राज्य आंतसुरक्षा सेवार केवेठ जोगदेल
3: कह आग ये निकटस्थ नारिकाल वन को आस सेटार बस सब कथा कह
4: हाँ चल
3: मु एई मात्र एक मास पूर्वरु एठारे आंतसुरक्षा सेवा को आसीछि एठाकार सेवा समस्त अवैतनिक
4: हां ए केमिति संभव
3: समस्ते समस्तंकु साहाय्य करबा भली एक दिव्य चेतनार परीक्षा ए समाज रे सफल हिचे अंशुमान
4: माने
3: स्वामीजीक अनुशासनर तृतीय पर्व शिरोनामा स्वावलम्बनशील क्रिया रे कहा जायछि समस्ते प्राय उनाहदिके सबु विभावकु स्पर्श करिवे राज्य पई समस्ते निजर अवैतनिक स्व स्व सेवा प्रदान करिवे आउ सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाधारी राज्य गुरुत्वपूर्ण पदवी मंडन करिवे
4: बा चमत्कार समाज परिचालना अच्छा तुम्हारे पूर्व दायित्व कौन थिला
3: अमरावती दीपपुंजस्थ द्वाविंशतम गुरुकुलाश्रम एक कनिष्ठ आचार्य पदवी मीमांसा आउ न्याय दर्शन थिला मोर अध्यापनार विषय
4: तबे सीमा सुरक्षा मुख्य वज्रभा संपर्क में मत किसी कहे कि
3: से बहु प्रतिभा समन्वय अंशुमान सर्वप्रथमे से एक कृषि श्रमिक थिले तापरे से निजर अध्यवसाय बलरे जणे आयुर्वेदाचार्य हेले परे किंतु से तांकर तीक्ष्ण विचारधारार सुय प्रतिभा प्रदर्शन करी अमरावतीर जनैक न्यायमूर्ति पर्यंत उन्नीत होइथिले
4: विषय चयनर के स्वाधीनता एवं अपूर्व समन्वय सुविधा
3: एई तो संध्या उपगत मते ध्यान केन्द्र को जीवाक हेबो
4: हां तबे उठ
5: माँ वसुंधरा
6: पिता
5: गोमाता सेवा एवं अतिथि सेवा संपन्न तो
6: हाँ पिता
5: तेरे मो स्वामी जी दर्शनार्थ यात्रा करुची हाँ सुन कन्या आज दिवस वर्षण मुख्य हो पारे गोशाला

0: प्रणाम घना करंत स्वामी जी।
1: हरि ओम तत्सत।
0: स्वामी जी अंशुमान स्खलन घटी
1: छे। कौन कहिले बज्रबाहू स्खलन पुणि अंशुमान रो?
0: हाँ स्वामी जी गतकाली शील सिद्ध निज चक्र संदर्शन करिछि।
1: की प्रकार अभिजोग शील सिद्धंकर?
0: मो कन्या वसुंधरा सहित
1: ना ता हे न परिवज्रबाहु अंशुमान सुशिक्षित तंक मुखमंडल शांत संभ्रमता भावरु से एक स्वतंत्र एवं उन्नत चरित्र वत्तार बोली स्पष्ट भाव ज्ञात हुए।
0: ताहले कौन शील सिद्ध अनुशीलन भ्रांतिपूर्ण?
1: सिद्धांत नेवा पूर्व परिस्थितिर गभीर अनुशीलन हेबा विधेय।
0: आपण भी तो भविष्यवाणी कहिथिले स्वामीजी बाह्य जनपद खूब निकट भविष्य आम दिव्य समाज को प्रदूषित कर दे पारे।
1: हाँ कहिथिली ता मोर बाणी थिला एबे भी कहुची किंतु अंशुमान जी से
0: एतबे ठीक अछि स्वामीजी आमे आउ थरे यार सत्य सत्य परीक्षा कर देखुचु।
1: हाँ तुम्हें ताहि कर बज्र बाबू
0: मु एबे विदा नेउछि स्वामीजी प्रणाम।
1: एई तो बज्रबाहु अंशुमानंक विरुद्ध रे पुनः सत्यता परीक्षा पै चली गले के तेबे अंशुमान तांको पाई मोर बज्र कठिन अनुशासन रे कोमल भाव उद्रेक होउछि काहे की
2: मोर अभिवादन ग्रहण करंतु महाभाग।

0: वृक्षदेवताय नमः।
1: ॐ वृक्षदेवताय नमः।
0: ॐ मरुताय नमः।
1: ॐ मरुताय नमः।
2: वैशाख शुक्ल चतुर्दशीर पूर्णचंद्र एवं पूर्वाकाश को उठुचंती। स्वामीजी विश्व शांति महाज्ञ पूर्णाहुति पाई यज्ञ कुंड स्थल को शुभागमन करंतु।
3: स्वामीजी प्रणाम खेलंतु। सीमांत अंचल जने धवल पोशाक आच्छादित दिव्यत्म पुरुष बाह्य जगतर आसी आपण दर्शन पाए अनुमति प्रार्थी।
0: धवल पोशाक आच्छादित दिव्यत्म पुरुष?
3: हाँ स्वामीजी, अशीतोत्तर वयस मन हमारे
0: वज्रबाहु से महाशयं को आसवे तुम्हें स्वयं साहय प्रदान कर।
2: स्वामीजी प्रणाम घना करंतु। आपण को कहिबा अनुसार आज हे वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, आपण मोर उत्तर देबे बोले मु आशा करूछि।
0: कौन कहले अंशुमान? मु उत्तर देवी। वत्स, तुम एबे चैतन्य पर्वतर निम्न देशर बुली आस, तत्पर मु तुमको विहित उत्तर प्रदान करबी।
2: ठीक अछि स्वामीजी, मु तबे किछ क्षण पर एठार उपगत होउछि।
0: कि चरम संदिक्षण उपस्थित, किए अंशुमान? मोर अंतरर निगुढ़ स्थान पर्यंत तार स्वर एपरि प्रतिध्वनित होउछि काहेकि ये कण मोर केहि ना ना ये अमूलक प्रश्न को।
3: स्वामीजी एई सही वृद्ध दिव्यात्मा उपगत।
0: हरिओम हरिओम, मोर प्रणाम स्वीकार करंतु दिव्यात्मा। आपण किए?
4: मते चिन्हि पाउना?
0: मो मनर स्मृति माने उदय हो पुणी अस्त हो जाउछंती जेमिति। आपणकर परिचय?
4: एई लफा पई मोर परिचय स्वामीजी, तुम्हें जो शिशु पुत्र को आज को ठीक पचास वर्ष पूर्वे मो हस्तर अर्पण कर आसीथिलो, तुम अनुरोध रक्षा करी ताकु एवं तार पुत्र को मु संस्कारित करी गढ़ी स्वामीजी। निजर पिता सठिक वंश इतिहास न पाई तुमर नाती खूब हताशा भाव के अजणा स्थान रे घूरी बुलुच।
0: तुम्हें फादर जोसेफ ना?
4: हाँ स्वामीजी, तुम लफाफा को साइति रखी खाली दिन गणु थी मु मनरे अनेक अनुसंधिच्छा कौन उल्लेख रही खाम भितरे मनरे भावु था एक नुआ इतिहास स्वर्णाभस खाल देखा एड़े लंबा महाखाल को पार करी पारिबी तो। देखो तुमर से खाम उपरे तुमरी अतीतर आत्मपरिचय दर्शन तत्वर अध्यापक मानस दासंक स्वस्थ लेखा दुई दाड़ी आज को ठीक पचास वर्ष पर खाम खोली एहा मध्यरे थिबा ठिकाणा अनुसारे मो नुआ दुनिया को निश्चय आसीबो।
0: फादर जोसेफ, वर्तमान रे स्वामी अद्वैतानंद को मध्यरे से अतीतर अध्यापक मानस दास भी बंची रही तत्कालीन पुतिगंधमय समाज एवं एबर पूत पवित्र अमरावती द्वीप राज्यर तुलनात्मक तत्व आकलन करुछि। से दिन से असहाय पुत्र लिपुमर
2: हरि ये कौन मु देखुचे? फादर जोसेफ आपण एठारे एठाकर ठिकाणा पाइले केमिति? देख देख वसुंधरा, मु जो फादर को कथा कहे यही होचंते जोसेफ फादर, यही पर पितामह को ठिकाणा गुप्त रखिचंते। फादर तमे तंको थरे चिन्हि दियो, मु मो परिवार रो इतिहास को पुनर्लेखन करबी। फादर
5: हाँ दिव्यात्मा, आर्यपुत्र व्याकुल निवेदन प्रति सदय हंतु।
2: स्वामीजी आपण मोर उत्तर देवाक कहते परा

0: ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती है। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा।

0: हेलो फोन इन मल्हारा।
1: हेलो नाने, नमस्कार।
0: नमस्कार भाई, आपण कोठो आपण को परिचय टी टिके देबे? आपण किए हो, केउठो कहउछंती?
1: मो रिलांचल होय कहउछि, ग्राम तलगा जिल्ला बलांगीर रस।
2: धन्यवाद भाई आमको कॉल करथिबारु। आपण केमिति अछंती?
1: मो त भलो अछि, मो त अनेक दिन हला आपण को ट्राई करथले, के वर्तमान 2 मास व्यवधान पर फोन टी लागिला, आइ टिके बहुत खुशी लागुछि।
2: धन्यवाद भाई, एते दिन अपेक्षा करी आपण हमको फोन टी लगे छंती, आ फोन टी लागि भी जाई छी। आपण को अनुरोध रो गीतटा हमको जणाई दियंतु, छोटा हम आपण को सुनाई परिबो।
1: मोर गीत ते होची जे महामोही देखा हेले महापरती दउछ, इटा होची महापरती तो एल्बम रो गीत।
0: ठीक अछि भाई, बहुत सुंदर गीतटी आमे आपण को सुनाई दउछु, आपण कर मन पसंद रो गीत।

0: हेलो फोन इन मल्हार
1: नमस्कार।
0: नमस्कार भाई आपण आपणक परिचय टी दियंतु आपण किए आ केउठ कहउछंती
1: ते आमी दशता नरेंद्र कुमार साहू अरगपटना आठगड़ कटक जिल्ला रु कहउछ।
0: नरेंद्र भाई नमस्कार स्वागत करुछु आजर कार्यक्रम को। अच्छा भाई आपण केमती अछंती?
1: भलो अछंती। नैना अपा नमस्कार।
2: नमस्कार भाई। भाई आपणक कथा सुणिकिरे लागुछि जेमिति आपण हमर समस्त कार्यक्रम सुनथिबे।
1: हम सब सुनजे टेलर काम यार चली दियो मो रेडियो चली दियो मो सुने सब।
2: धन्यवाद भाई आपण आपणकर एते व्यस्तबहुल जीवन भितरे हमको समय दे परछंती तो आपण को गीत सुनिबा को चाहिबे हम मानक
1: आज सुनिबा बाटेरे वर्षा हला हातेरे छता नथिला शरत नायक गाइछंती।
2: निश्चय भाई आमे आपणक मनपसंद गीत निहाती भाबे आपणक सुनाइबो।

0: हेलो फोन इन मल्हारा।
1: हेलो
0: हेलो भाई नमस्कार। आपण आपणक परिचय टी दियंतु भाई, आपण के आउ केउठु कहउछंती?
1: ओथाला कृष्णम कृष्ण महाराणा गजराजपुर देवदेवल जगदसनपुर।
0: नमस्कार भाई, स्वागत करुछु आमर आज मल्हारा कार्यक्रम को।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अच्छा भाई आपण केमिति अछंती?
1: भल भल अछि। आपण भल अछंत?
0: हाँ हाँ भाई आम भल अछु। अच्छा भाई आमर जुबवाणी समस्त कार्यक्रम आपण शुणती कि नहीं कहतु?
1: जेते काम थिले सुद्धा सारे जुबवाणी मो परिवार भी शुणत।
0: जा हो भाई जानी की बहुत खुशी लगला।
2: तेबे भाई आपण केउ गीतटे सुनिबा को चाहिबे आज कार्यक्रम रे?
1: मते गप हेले भी कथा टे सत ए गीतटा नचे जगन्नाथ गोटे भल भजन शुणात।
2: निश्चय भाई आम आप मन पसंद गीत निहाती भाव आप शुणु।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद भाई।

0: हेलो, फोन इन मल्हारा।
1: जय जगन्नाथ, नमस्कार।
0: नमस्कार भाई, स्वागत करुछु आमर आज मल्हारा कार्यक्रम को।
1: धन्यवाद
2: भाई, आपण किए कौठ कहउछन्ती आम श्रोताबंधु मानंकु टिके जणाई दियंतु।
1: मु खोर्धा जिला मोठा ग्रामरु दिव्यलोचन भारीमल कहउछि।
0: आपण केमिति अछन्ती?
1: जगन्नाथङ्क कृपारु भलरे अछि। मु जगन्नाथङ्क निकटे प्रार्थना करुछि, आपण माने मध्ये निरामय भावरे रही दीर्घ जीवन भोग करन्तु।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भाई, भगवान का दया समस्ते आम भल आपण भी भल रुहत। अच्छा भाई, आम आज कार्यक्रम अनुरोध गीत कौन रही?
1: उठ भोग खिया मोचक आखिया उठ ए पहड़ भाजी।
2: ठीक अच्छे भाई, आम निश्चय आपण को आपण मनपसंद गीत शुणाई देबू।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होंठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोगों ने बायो विलेज तो जरूर सुना होगा, लेकिन त्रिपुरा के कुछ गांव बायो विलेज 2 की सीढ़ी चढ़ गए हैं। बायो विलेज 2 में इस बात पर जोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। इसमें विभिन्न उपायों से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। सोलर एनर्जी, बायोगैस, बी कीपिंग और बायो फर्टिलाइजर, इन सब पर पूरा फोकस रहता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान को बायो विलेज 2 बहुत मजबूती देने वाला है। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ रहे उत्साह को देखकर बहुत ही खुश हूँ। मेरा आग्रह है कि आप भी उसे अपनाने का प्रयास कीजिए।

एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, एक रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲେଖିରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी

0: ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर

0: मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रूपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे।

केडे सुन्दर पवित्र शिवमय वातावरण यही तपभूमि दानव मानक गुरु शुक्राचार्य यही भूमि कछक मृत संजीवनी विद्या शिक्षा देते यही मृत।

0: पिताश्री पिताश्री
1: पिताश्री अरे आपण एठारे नीरबरे बसी रही चंदी जे
2: किछ विचार करथले पुत्री
1: कोन विचार करथले आज मु बहुत प्रसन्न अछि आपण तो ई शिलाखंड उपरे बसी रही चंदी एठारु छिड़ा होई टिके अनंतु तो सेई झरणा पाखरे मु गोटिए पुष्प वाटिका निर्माण करिनथिले आज से गच्छमान करे फुलो ही फुलो प्रस्फुटित होई छि ए जो सुगंध महुल फुल गच्छरु आसुछि
2: अच्छा
1: हाँ पिताश्री संपूर्ण वन प्रांतर रे बहुत पलास फुल फुटी छि आपण मो पई पलास फुल तोळी आणि दियंतु ना मु निजर पन कुटीर को सुंदर भावे फूल रे सजेबी पिताश्री आज तो हम कुंज रे कोइली भी कोह कोह गीत गाउछि पिताश्री कोइली रो रंग तो कला किंतु केते मीठा तार स्वर हेले किछ लोक गुण को वर्ण भेद सह काहे की तुलना करंती पिताश्री
2: अच्छा पुत्री मु भावुछि जे आज दानवराज वृष पर्वं को साक्षात करी चले आसीबे अनेक दिन हला यज्ञ पई तांकर संदेश मो पाख को आसुछि
1: हां पिताश्री दानवराज तो अनेक थार आपन को साक्षात करबा पई भी आसी सरलेनी
2: हां मु संध्या सुद्धा फेरी आसीबी हेले तू एई एकांत रे अरण्य रे एकुटिया
1: मु एकुटिया केउठे छी पिताश्री मो संगरे तो अछंती हसुथिबा तोहुलुथिबा रंग बेरंगर अनेक फूल गुणु गुणु गीत गाउथिबा भर कुहु कुहु गीतर स्वर तोळुथिबा कोइली कळकळ निनाद करी बही जाउथिबा झरणा आउ एपाक सेपाक दौड़ा दौड़ी करुथिबा हरिण
2: बस बस बस बहुत दुष्ट हो गलानी मोर ई सरलिया छोटा अच्छा मु जाउछि निजर ध्यान रखिबो
1: प्रणाम पिताश्री
2: आयुष्मति बाबा
3: शिकार अन्वेषण रे मु केते दूर जाए चली आस सैनिक माने भी पछरे रहिबनी केड़े अद्भुत सौंदर्य सुगंधित सुशीतल पवन पुष्प भारे लदी हो पड़ा डाण सते सते कि सका प्रथम किरण धारे वन ललना सब स्नान कर संपूर्ण वन प्रांतर में मनोरम चैत्र मास मदन दूतीर कूजन पी गई चली अरे मो सम्मुखर ये सुंदर पर्णकुटीर तो राजगुरु शुक्राचार्य भाई मन हो जाए गुरुदेव को सह दर्शन करनी गुरुदेव गुरुदेव
1: किए
3: अद्भुत सौंदर्य मुदंड जनपद अधिपति आपण परिचय
1: आपण को सुस्वागत है राजन मु अरजा गुरु शुक्राचार्य सुपुत्री पिताश्री दानवराज वृष पर्वा यज्ञ कार्यक्रम पाई
3: मुँ यही बाट दे शिकार को जाऊली भाविली राजगुरु साक्षात करी मुंदाए जल मिल
1: हे राजन आपण कुटीर से आसन ग्रहण करतु मु आपण जलपान व्यवस्था करुच्छी
3: अनुपम सौंदर्य श्वेत

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଆର୍କେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ବୀଣା ବାଦନ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11:00। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: Free trade agreement is a great opportunity.
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली।

श्री जगन्नाथक रीतिनीति मानवीय चलनी अनेक रही से कहुए जथा देहे तथा देवे आमे जपरि सकाळ उठि मुह धोई दांत घसी स्नानादि नित्यकर्म संपादन करू प्रभुंकर सेपरि नीति हुए शुक्ल पुष्प प्रेक्षण कर जलरे प्रभुंकर मुख प्रक्षालन हुए प्रभुंकर कुंभाटुआ किंबा बौल दांत काठी कर्पूर गुंड त्रिफला चूर्ण लगा जाय दंतमार्जन कर्म संपादन हुए यहपर श्रीजीवी बिंब स्नान हुए यही नीति को अवकाश कहुए दिने श्रीचैतन्य अवकाश नीति श्रीमंदिर परिसर में था अवकाश पर नीति व्यवहृत दांतकाठी खंडे महाजन सेवक श्री चैतन्य को देले एही ब्रह्मभोग्य दांतकाठी को श्रीमान चैतन्य देव तांकर अनुगामी साधु हरिदास पछपटे पोती दे पानी ढालिले ब्रह्म सत्य हेतु जड़ मध्य चिन्मय हो जाए नामनिष्ठ सन्यासी हरिदास दिन को निष्ठार सह तीन लक्ष नाम जप करती श्री जगन्नाथ महिमा श्री चैतन्य विश्वास हरिदास नाम निष्ठार दांतकाठी गच्छ हेला गच्छ बढ़ी बढ़ी महाद्रुम परिणत हेला यह साधु हरिदास को खरा वर्षा काकर रक्षा कला गच्छ उपरे वर्षे आखि पड़ा राजकर्मचारी से वर्ष रथयात्रा पूर्व बौल काठ नियंटा हेला बौल काठरे प्रस्तुत सेनापटा प्रभु पहंडी विजे पूर्व प्रभु श्रीअंगे लागि हुए प्रतिवर्ष बौल काठ साक्षी गोपाल बकुल वन संग्रह हुए से वर्ष काठ न मिलवर राजकर्मचारी मैंने राजा खबर देले बालीसाही सेनापटा उपयोगी बकुल वृक्ष अच्छी भोई सेवक और कलाबेठिया द्वारा गच्छी हणा हो अणाजार निष्पत्ति करागला श्री चैतन्य ए खबर पाइले बौल गच्छ कटा हेब शुणी मन कष्ट राजसभा श्री चैतन्य पहुंचले राजा पचारे राजन गोटे माटी कुड़ुआ महाप्रसाद कौन दिथर अर्पण करहब ठाकुर राजा कहले ना उच्चिष्ट हो श्री चैतन्य महाप्रभु पचारे विगत दिन उलागी फुलमाल कण प्रभु पुनर्वार अर्पण करहब महाराज कहले ना एपरी हुए ना ताले श्री जगन्नाथ दांत घसार व्यवहृत दांत काठी सृष्टि गच्छ पुनश्च प्रभु को लागेब किपरी राजा कहले यह कौन सत्य भल बौल काठ तो मिलूना तेणु गच्छ काटा हे श्री चैतन्य कहले जहां ठीक भावुच ता कर श्री चैतन्य जगन्नाथ महाप्रभु को मन मन यह जन सभार उठी आसिले चैतन्य स्वयं मना कर सत्वे राजा विचारे चैतन्य सब कथ सत बोली प्रमाण कौन राजा निर्देश में सकाळे बालीसाहीर बौल गच्छ निकट को भोई सेवक और कलाबेठिया मैंने गले गच्छर चौहदी बदली जाइए चिन्ह से गच्छ सड़क सुंदर बौल गच्छ अष्टवक्र रूप धारण कर ठीक छता टीए पर सत्यजेपरी भक्त हरिदास को छाय प्रदान कर मंज ना अंतसार शून्य फंपा हो विचित्र घटना देखि कलाबेठिया फेरी आसिले रात्र राजा स्वप्नादेश है हे राजन श्री चैतन्य ठीक कहते वृक्ष स्वरूप भक्त साधक हरिदास को छाय प्रदान पूर्वक मुठी छता भली रही रही नाम शुणापी राजा स्वप्न घटना वर्णना कले सारा सहर श्री जगन्नाथ और श्री चैतन्य महिमा खेलीगला एत कथा पर दियों गच्छे कुराड़ी मारे आउ किए साहस कर बकुल गच्छर नाम है सिद्ध बकुल एवं पूरी बालीसाही सिद्ध बकुल मठ से सही गच्छ अच्छी जहां श्री जगन्नाथ महिमा सह श्री चैतन्य और हरिदास स्मृति और कीर्ति को साइती रखी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता बंधु, वर्षा दिने आमे दिगु छोट छोट सतर्कता अवलम्बन करिबा, तले बड़ बड़ विपदको आमे एडै परिबा। घरर छात, बारंडा एवं अगणारे पानी जमी रहिबाको आदो देबा नै। नाळ नर्दमाको नियमित सफा रखिबा, जादरा वर्षा पानी सहजरे बाहर जिवो। घरर शौचालय, रोसई घर एवं जोठे हमर पानी रखुचे गाधिबा पई किबा व्यवहार पई, से सब स्थानको सफा रखिबा। छोट पिलामानको अपरिष्कार पानी किंबा जमिथिबा पानीरे खेलिबाको आदो दबाने, कारण सेथिरे विभिन्न प्रकार बैक्टीरिया संक्रमण द्वारा विभिन्न प्रकार रोग होइथाय। तें बर्षारे बाहरु आसिले ओदा पोशाक शीघ्र बदलै शरीरको सुखिला रखिबा। ज्वर, काश, झाडा किंबा अन्य कोनोसी असुस्थता देखागले निजे निज मनको औषध न खाइकि डाक्तरको परामर्शरे औषध खाइबा दरकार। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिबा ही सुस्थ जीवनर प्रथम पदक्षेप।

आहा, केते समय मु सोई पड़िली, प्रभात हेबाकु आउ डेरी नाही बोधुए। ए अपरिचित युवकटी किए मो कक्षरे प्रवेश कले किपरि? गृहर द्वार तो रुद्ध होइछि, आसिले किपरि? तेबे कोन के देवकुमार? किंतु कि लज्जार कथा, मु अविवाहिता युवती हे, जणे अपरिचित युवक संगरे एक पलंकर निद्रा जाइछि। जदि सखी माने आसी पहुंची जांती, ना ना, से माने आसीबा पूर्वरु मोर कक्ष त्याग करि चली जिबा दरकार। मात्र ए कोन, मो पाद दुईटी जेमिते आपे आपे टाणी हे जाउछि, ए कक्ष छाड़ी मु जाई परु नाही। आहा, ए की देवदुर्लभ रूप, की तेज! हे प्रभु इष्ट देव, मा भगवती, मो अंतर वेदना जानी तुम्हें निश्चय आंकु आनी मते देइछ, यांकु छाड़ी मु जाई परिबि नाही। हे नवीन युवक, दस दिगपाळंकु साक्षी रखी मोर मन प्राण मु तुम्हारे अर्पण कली। उठ नाथ।

0: मते बार बार करी कहना आरे बर बरना
1: एक कथा काहे की कहउछंती स्वामी आपणक शक्ति पुणी मते अजणा अछि
2: तेबे मो इच्छा विरुद्ध रे तुमे काहे की जाउछ।

0: मते बार बार करी कहना आरे बर भरना
1: मोर शेष कथा शुण राणी जी मते परास्त करिबो तार सहित उषार विवाह मु देबी एहा मोर दृढ़ व्रत
2: हे हर पार्वती तुमे ही मो उषार भरोसा जेमामणि तुमे एपरी काहिंकि होउछ केही त कुआडे नाहंती एठी पुणी आसिला किए
3: सखी चित्ररेखा सरला से कुआडे गले किए तांकु मो पाखरु छड़ै नेला
4: आमे आओ पारिउ नाही जमा राणी मा आसी बुझंतु
3: सेतेबे ठीक अर्धरात्र मो निद्रा तुटी जानते मु देखिली से दिव्य कांति ज्योतिर्मय पुरुष मो पलंग करे सोई चंती तांकु देखि मो पलक पात हेला नहीं प्रभु इष्ट देव मा भगवती सते जेपरी मते चेतै देले एही तोर इह कालर देवता पर कालर त्राणकर्ता मने मने तांकु मो हृदय अर्पण करी मु पुणी निद्रा गली निद्रा भांगी गला परे देखुछि किए जेमिति कौठु आसी मोर हृदय स्वरंकु अंतर करी नै छंती
5: छी जेमा दे कांदो नै ये खाली सपन कथा सतरे कोन एमिति कौठी घटे

0: प्रिय सखा जयंत कह मत केमते कि उपाय पाई
1: सखा विधाता जदि तुम लगे गढ़ी थे दिने ना दिने से तुम पाखक फेरी आस
0: देखिल जयंत ए रमणी चे किए पगलिनी पी आमरी उद्देश्य एणिक आसुची
1: हाँ सत्य तो

0: नाथ ए अधीनार विनती घेना करंतु
1: किछि सुनिबि नाही से पापी ने मोर सर्वनाश करिछि प्रहरी
2: आज्ञा शिरोधार्य महाराज
0: नाथ उषा सहित ताहले मते मध्य कारागार निक्षेप करंतु
1: आपत्ति नाही ता उपरि कन्नार माता मध्य तारि परि दंड पाइबा उचित प्रहरी
2: क्षमा महाराज दानमुकुल लक्ष्मी आम महाराणी को कारागार को नेवा पाई मोर हस्तपद चलु
1: जा कहुची ता मोर आज्ञा पालन कर आउ छोट मोर आदेश ए मूर्ख अनिरुद्ध को काली

0: नारायण नारायण।
1: आसंतु आसंतु देवर्षे, आपणंकर मंगल त
2: प्रभु। गोलोक बिहारी कृपारू अमंगल जीवन घटनी
1: मु मने मने आपण को स्मरण करूली।
2: मोर सौभाग्य प्रभु।
1: मोर नाती अनिरुद्ध संवाद कहतु, किछि दिन हला से द्वारिकारू अंतर्धन हो जाइछि।
2: अनिरुद्ध
1: हसिले जे।
2: अनिरुद्ध चोरी करूला धरा पड़ी।
1: चोरी? अनिरुद्ध चोरी करूला?
2: व्यस्त हुंतु नाही द्वारकापति, आउ किछि चोरी नुई। बाणासुरर कन्या उषा सहित अनिरुद्ध गोपन प्रणय स्थापन करिथिला। दैववशत बाणासुर एक कथा जानिपारी ताकु नै श्मशान रे बलि दउथला, किंतु मां भवानी कौशल क्रमे अनिरुद्ध को सात दिन पई उद्धार करिछन्।
1: अनिरुद्ध मोर काहि
2: सोणित नगर रे बाणासुरर बंदीशाला रे।
1: मूढ़मती बाणासुर री आस्पर्धा, मम पुत्र अनिरुद्ध करिछि से बंदी के अछि? बाणासुर विपक्ष रे हेबो युद्ध अभियान आदि यही मुहूर्त रे।
3: साजरे जादव बीरे साजरण साजरे, साजव जादव बीरे साजरण साजरे, तर्पिष्ट बाणार गर्व खर्व कर आजरे, तर्पिष्ट बाणार गर्व खर्व कर आजरे।

0: दूतवर
1: आदेश द्वारिकापति
0: बाण से कह जाई प्राणे आशा जबे थाय तार अनिरुद्धे घेनी आसु शीघ्र आम्ब पास ता नहिले मुंडहीन गंडितर लोटिब ये मही।

0: अन्तराज
1: के संवाद प्रहरी
0: द्वारका दूत छामुङ्क दर्शन अभिलाषी
1: द्वारका र दूत आसिबाको आज्ञा दियो
0: जे आज्ञा
1: द्वारकाधिपति कृष्ण मो पाखको दूत पेसिछि कहिके
2: दत्तराजङ्कर जय हो
1: आगमनर उद्देश्य जनाओ दूत
2: दानवराज अनिरुद्ध कहार वंशधर जानन्त तांकु शीघ्र मुक्ति दियन्तु
1: मुक्ति नदले
2: अनर्थ घट्यो
1: मु त चाहे अनर्थ घटु
2: रामकृष्ण दुई भाई जदु सेनास आपनको राज्य सीमार उपस्थित शक्ति अछि त तांक सह युद्ध करन्तु नचेत अनिरुद्धको मुक्ति गरी तांक निकटले क्षमा भिक्षा करन्तु
1: क्षमा भिक्षा एते बडो अस्पर्ध मु माकिबि क्षमा सामान्य गोपाल निकटे
2: तेबे युद्ध अनिवार्य
1: जनाओ से कृष्ण अविलम्बे युद्ध सहजे साजी भेटिबि मु ताकु आदि युद्ध हेबो मो शक्तिर परीक्षा

0: तोर इच्छा स्मरण कर
1: रक्षा कर गोविंद मो बर पुत्र बाणासुर को रक्षा
0: ना भवानी मत बाधा दियो ना मुश्चय बाणा को बध करी
1: बाण युद्ध तु हारी जाइ एबे कृष्ण क्षमा मागी जीवन रक्षा
2: कर जीवन जीव पछे मुझे क्षमा मागी पारि
0: सुनले तो देवी पार्वती मुझे चक्र स्मरण करुची
1: मो मिनती रक्षा कर जनार्दन
0: तेज शुण देवी तुम्हारे अनुरोध रक्षा करी मुताकु प्राण रे बोध करी न पारे किंतु तार सहस्र वायु छेदन करी तार गर्भ खर्ब करी
1: दया सागर श्री हरि सहस्र बाहु मध्यरु बाणार मात्र चारि गोटी बाहु रक्षा कर से मोर पुत्र परी
0: बेश तमरी कथा हो
3: एते दिन के एते दिन के मु शक्तिहीन हेली मोर अहंकार समुचित दंड मु लाभ कली मधुसूदन

0: क्षमा करो।
1: उठ
0: मत क्षमा करो।
1: उठ वीरव बाणासुर उठ।
0: माँ दुर्गे मोर प्रार्थना मोर कन्या उषा को मु तार योग्य पात्र अनिरुद्ध हाथ में अर्पण करुचि।
2: द्वारिकाधिपति तो प्रार्थना निश्चय पूर्ण करिवे।
1: ए प्रस्ताव रे मु अति आनंदित देवी। चलंतु आपण मानक सम्मुख रे ए मिलन उत्सव अनुष्ठित हेबो।
3: शुणिले गीति नाट्य बाणा पराजय। मूल रचना बालकृष्ण महांति। बेतार रूपांतर गोपाल छोटराय। संगीत परिचालना करिथिले बालकृष्ण दास एवं भुवनेश्वर मिश्र। प्रयोजना करिथिले हेमंत कुमार दास एवं गोपाल छोटराय। नाट्यांशरे थिले बाणासुर हेमंत कुमार दास, उषा झरणा दास, शिव अब्दुल सतार खान, दुर्गा संजीवनी सुधा पटनायक, राणी मनोरमा सौदामिनी पंडा, चित्रलेखा बासंती देवी, सरला विजयलक्ष्मी सेठी, अनिरुद्ध केशवचंद्र शतपथी एवं जयंत शरतचंद्र मुलिया। संगीतांशरे थिले अतीश कुमार मजुमदार, अनिमा कर, राधामणि महापात्र, शिशिरा दास एवं भिकारी चरण बड़।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी कटक। शुणु आज कार्यक्रम सूचना।

0: चेतना कहला गए जुहे
1: अच्छा
0: ये राम पृथ्वी के धरी छी ए राम को नाम धरिले
1: अच्छा
0: ते पृथ्वी रे मुक्ति पाइबो
1: हेला
0: ए जो पवित्र राम
1: अच्छा
0: मर्यादंत पुरुषोत्तम राम
1: ठीक
0: हमर दुरोश्रवण रो कर्मकर्ता माने करो
1: आहा
0: ए पृथ्वीवासी रो कल्याण करंतु बोल से एक बार
1: हरिबो
0: भाई
1: हां
0: जगत रे चारिटा कथा दुर्लभ
1: अच्छा
0: गंगा का पानी गीता का वाणी टंक तुराणी राम का कहानी आज राम का कहानी कही रामायण कथा
1: अच्छा
0: वह सबरीपुर श्रीराम
1: ठीक ठीक
0: लिखिंट उत्कल केसरी
1: अच्छा
0: गायक गुरुमर उदयनाथ रथ शर्मा स्वर्गत हो गले
1: कौन
0: लिखिले
1: कौन
0: रामायण।

0: अब्रीभ ताला बंद दुर्गा
1: अच्छा
0: राजा रानी
1: हाँ
0: अरे कहीं की डाकू चत्तम में
1: माँ हम कोले रे पुए जियो नहीं गुटे जियो टे का दबु
0: जियो टे ने कौन करीबो
1: दुही ता दुही कोले रहित तो साधन करीबो
0: ताले वोटियो का था सोने
1: हाँ
0: जो दी जियो टे ना पाई तो मैं कहूँ चो
1: अच्छा
0: तो मैं जियो जन्म हबो
1: हाँ
0: जो दिनों बाहा हबा समय हबो बाहर हबो
1: अच्छा
0: सही दिनों मोरो ये मंदिर रे सोया आठे में सब बलि दबो
1: मुझे भागर दिनों सोया आठे में सब बलि दबी माँ
0: राजा रानी सत्य करी देले घर को पड़े आसी
1: अच्छा
0: यही पर किसी दिन
1: क्रम बीती गला
0: यही पर किसी दिन।

0: करते हुए आशीष की
1: स्वर्ग वापस चोरी
0: ये छिया जन्म हेला।
1: अच्छा
0: आस्ते आस्ते बढ़ला एक दिन हेला
1: हेला
0: एक दिन ना देवे
1: देवे
0: डाकिले ब्रह्मां का पो नारद को ब्राह्मण को नारद आसुचंती नाती दबा पाई
1: ठीक
0: केमिति से आसुचंती
1: केमिति
0: लिखिले उत्कल घंट जदुमणि।
1: अच्छा
0: बही होची प्रबंध पूर्ण चंद्र
1: हेला
0: केमिति वे सहिके आसुचंती
1: केमिति
0: बही चंदे मोने वो कुट पिंगळ।

0: हाँ
1: तमरा कौन अभाव है कहीं कथा कहू न
0: कह
1: रानी कहले झील जुवती है
0: अच्छा
1: झील घी सहित उचित नुहे
0: ना
1: दिन चिंता कले झील टी बाहा करिया
0: ठीक ठीक
1: एठे राजा कहले रानी
0: हाँ?
1: मो झी को बाहा करी
0: चारिणा
1: लक्ष राजा निमंत्री आनबी झील स्तवरण।

0: कौन मोहन ठाकुर जो घुना करके फिंगी देलु
1: अच्छा
0: से फल कुमने के पकेले गंधमाधा पर्वत रे
1: ठीक
0: ये हला विषय लकरणी जो न तू लंका रे रावण शक्ति भेद करियो तते
1: अच्छा
0: एक अग्नि बाण
1: हां
0: सेई दिन हनुमान आसी
1: हां
0: मोर ओंठा फल कुनले तो घर लागले तू मुक्ति पाइबु
1: मुक्ति पाइबु
0: राम कहले मा अभिशाप दे देलु
1: अच्छा
0: सबरी कहले आज रो अभिशाप नुआ
1: ये पूर्वरु अछि
0: ये पूर्वरु सरज कुल रे शिव
1: कपिला बधिले
0: गंगा थाई करी तंकु
1: अभिशाप देले
0: ठे कहले आज अभिशाप नुह
1: पूर्व अभिशाप
0: जिते सरजु रे गाधो थे शिव उष खाई गला कपिला गाई
1: अच्छा
0: कृष्ण मार के गाई के मारी देले
1: ठीक
0: ब्रह्मा कहले ए गोबध बापुर तुमको मुक्ति नहीं
1: ना
0: मो ब्रह्मा गोप पौलस्त
1: अच्छा
0: विस्तरवा विस्तरा पो रावण
1: ठीक
0: रावण अतर अच्छी एक ज्ञान तमे इतने लंका को जीव
1: अच्छा
0: एक ज्ञान छात्री मारिबो
1: किरे
0: तमे शिव लक्ष्मण की जन्म हब ये सत्य के लंकार तुमको जाकि रावण मारिबो
1: अच्छा
0: जो गोबध पाप करथिलो कला राम रे
1: तमे आ भय करली
0: मु होची पार्वती सबरी हर जन्म हली
1: अच्छा
0: मो स्वामी होचिन शिव लक्ष्मण
1: ठीक
0: ये ए लक्ष्मण के जन्म हले
1: हां
0: तमे आ मुक्ति पाइबे मो स्वामी
1: ठीक
0: मो स्वामी किछ मैंने विश्वलाकरणी कर दिली
1: ठीक
0: जा तुम एथर चली जा
1: अच्छा, अच्छा।
0: एक कथा कह लक्ष्मण नहीं जाइए किए सबरी लक्ष्मण दिन कहीं मिशीगला शिव पाखे शक्ति नीले शिव सब पलटी जाती
1: अच्छा
0: लक्ष्मण ये थे शिव सबरी थी पार्वती उभय थे मिशीगले पूर्ण ब्रह्म तो प्राप्त होगा लक्ष्मण शक्ति आसला युद्ध करने एठे रामायण सरीगला
1: ठीक
0: कहला आज एठे रहिबो राति पाइले तुम ऋषि मुख यात्रा करिबो
1: अच्छा
0: आरण्यक कांड शेष आरंभ होला सिंधुला कांड
1: ठीक
0: हो जय जगन्नाथ।

सेक्टर 11 सीडीए कटकरु लिखिछन्ती उर्मिला निर्मला प्रत्युष एवं प्रभाकर आपण शुणिबाकु चाहिछन्ती उदंडी सीता कथा चित्रर गोटे गीत तेबे श्रोता बंधु डेरी कहिंकि शुणिनियंतु आपणक पसंदर गीत गीतटिकु गाइछन्ती गीता दास एवं देवाशीष महापात्रा।